साहिब जियो जब लौ नहीं भाग लाल मुदा तब लौ भ्रम के फिरते बहतायो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह माथरा जगतारन का अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्व न आयो किछ रूप नहीं किछ जात नाही किछ ढंग ना मेरा मोह क्या बोल है गुण विहून नाम जपया ना तेरा हम पापी संग गुर उबरे तुन सत गुर केरा तू प्रभदाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मां क्या मांगो किछ फिर न रहाई।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहज सियाणपा लख होहे ता इक न चले नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़े टुटे पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मे जे बुझै ता होमे कहे ना कोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाई आचार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खेह गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे जिससे दूर गावे को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोठी कोट कोट देता दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखे मंगे देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिया जित तिसै दरबार मुहो के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार।

निवारणहार दुखंता सुखरास ताको बिघ्न को लागी जाकी प्रभ आगे अरदास। तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो ना जाने मेरा कोई ना हो ना जाने मेरा। वाहिगुरु साहिब संग जी फतेह का जवाब फतेह सेना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जियो। तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना न जाने मेरा। क्या हो कथी कथे कर देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो दुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वडियाई, तिल तेरी वडियाई। वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी, कृपा करनी सतसंग जी रन मिल के फतेह बुलानी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो वाह महाराज, इट्स बीन हैज ब्लेस्ड अस दिस वीक टू गो थ्रू द कथा ऑफ द 16th पौड़ी ऑफ श्री जपति साहब। सो फार वी हैव गॉन थ्रू ऑल द पौड़ीज ऑन सुनिए ऑन मने एंड लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट गुरु साहब एड्रेसिंग द सिद्ध ऑन द टॉपिक ऑफ द तौल तरम। सो ही वाज महाराज वाज डिस्कसिंग विद देम व्हेदर देयर इज अ बुल दैट्स होल्डिंग अप द वर्ल्ड। एंड दिस वीक महाराज स्टार्ट्स टू कम ऑन टू अ न्यू सिस्टम दैट डिस्कस विद हिम व्हिच कैन बी कॉल्ड व्हाट इज माया, कि माया है कि। एंड वी ऑल नो यू माइट हैव हर्ड दिस बिफोर, जो है पढ़े लिखे बैदमी कि त्रै गुण, कि माया के तीन गुण है, माया हैज थ्री गुण्स। एंड दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस नाउ विद गुरु साहिब जी। एंड देयर इज थ्री बॉडीज दैट डिस्कस दिस, एंड दे स्टार्ट ऑफ विद दिस बॉडी ऑन असंख जप असंख पाव, एंड वी नो दैट्स द 16th बॉडी। सो व्हाट वी आर गोना डू इज जस्ट सिंग थ्रू दैट बॉडी नाउ of the first of the 16th body. Now there are three bodies that have asank in the beginning. The first one is this one, asank jap, asank pao, asank puja, asank taptao. And then later on Maharaj goes to a body where they talk about the people that are doing bad stuff, and then they go on to talk about a body where people is kind of the next step. So we'll talk about these three in the next 3 weeks, but today we'll do the first one.

0: जिस विसरह सो मर जाए।
1: महाराज सेज की तुद चित आए महा आनंदा। ओ वाहिगुरु जी, व्हेन आई रिमेम्बर यू आई गेट द हाईएस्ट ब्लिस, द हाईएस्ट ब्लिस एवर, आई गेट इट फ्रॉम जस्ट रिमेम्बरिंग यू। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। व्हेन आई फॉरगेट यू, द पर्सन हु फॉरगेट्स यू मे एज़ वेल डाई। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट पर्सन कमिंग अपॉन दिस अर्थ हु फॉरगेट्स द नाम। जिन ऐसा हर नाम ना चेतियो से काहे जग आए राम राजे। ओ वाहिगुरु, दोज हु डोंट से योर नेम, व्हाई डिड दे कम हियर? व्हाट वाज़ द पॉइंट of being a human being and not using it for the point of anand, maha anand?